যুগ যুগ অটল অমৃত দে দাতে গুরসাগর রতনি ভরপুরে অমৃত সন্ত যুগ হ্যাঁ নহি দূরে। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। गुर जैसा नाहीं को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाहीं होर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र गोद दे विच सुभाए मान गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ आओ बहुत ही बड़ पागे हो

0: कर ले मन मेरे घुर कर शब्द सुपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु न देखियो न कियो ते अखियत संसार में सुख टल गो से
1: वाहे।

दुख दर्द भव निक नत नरक रह हो जो सुने गुंग जो जाय सुरस न पावे सुने मूढ़ चितला चतुरता आवे दुख दर्द भव निक नत नरक रह हो जो जाकी एक बार चौ पई को कह चौ पई संबत सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहस पुण तीन कही जय।

मते एक न बने हो सिमरत शास्त्र बीत सब भेद कह हम एक न जाने हो। श्री असमान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहूं सब तो बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ कह।

दे मंग सहसा गुना सोब करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा पा बेकार एक हुंदा खा चलाया था तिना भिका इकार जल था जिया पुरिया लोवा या कार ओ जा किस तू है जाने तिना भी तेरी सार नानक भक्ता पुख सलाहन।

पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आरजा पड़ी है जेते सास

कुड़ पहनन हार, कुड़ काया कुड़ कपड़, कुड़ रुपया पा, कुड़ मिया कुड़ बीबी खप होय खार, कुड़ कुड़े ने हो लगा विसरिया करता, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार, कुड़ मिठा कुड़ माखियों कुड़ो बैपू ना।

सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी।

0: सुध कहावे काची पीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊचो
0: नानक नाम उदरे पतित बहु मूच
1: ओ सियाण जान का पो व्यापे
0: अनेक जतन कर कृष्ण नाथ रापे
1: देख ने अग्नि बुझे
0: कोट पा दरगे नहीं सिजे
1: ऊस नाही उप्यालो
0: व्यापे माया जाल
1: और करतूत सगली जमदाने
0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
1: हर का नाम जा दुख जाए
0: नानक

0: छोरे
1: को जन्म मन तेरे
0: साजना की सरनी परे
1: जन कौपराव दर्श व्यासा
0: नानक ताके बल बल जासा
1: सार पुरख में पुरख प्रधान
0: समझा का मिटे अभिमान
1: आस को लो जाने नीचा
0: सो गनिये सब दे ऊंचा
1: का मन होए सल की दीना
0: हर हर नाम दिन काट काट चीना
1: मन अपने दे बुरा मटाना
0: देखे सगल श्रेष्ठ साजना
1: दू दू जन सांसद सेता
0: नानक पाप नहीं ले पा
1: निर्धन को तान तेरो नाओ
0: मिथामे को नाओ तेरा था
1: कटा को देवो दान
0: सगल कटमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान
1: रावण हार स्वामी
0: सगल कटा के अंतर जामी
1: अपने गद में जानो आपे
0: अपन संग आप प्रभु राते
1: उमरी औत तुम ते होए
0: नानक अवर न जान सकोए
1: हरो धर्म श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जब निर्मल करम
1: बल क्रिया में उत्तम क्रिया
0: सासंग दुर्मद मल हिरिया
1: उदम है उदम पला
0: हर का नाम जपो जी सदा
1: हर वाणी में अवर्त वाणी
0: हर को

0: कृपा तरे
1: संग साई सो आवे नचीत
0: जो बराई ता सो प्रीत
1: बलुआ के ग्रह भीतर बसे
0: अनद केल माया रंग रसे
1: जय कर माने मने प्रतीत
0: काल न आवे मुड़े चीत
1: वैर विरोध काम क्रोध मोह
0: झूठ विकार महालोक क्रोध
1: यहाँ ज्योत बयाने कई

0: नमस्कार।
1: लाका मन लागा बड़ा मीठा,
0: सर्व सुख पाहु मन उठा।
1: जन अपना हुक्म नाया,
0: सर्व दुख नानक तिन पाया।
1: अपनी दे रास
0: बढ़ते अनद उलास,
1: अपनी मान को बहुत सवाले।
0: अज्ञानी मन रोष करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही खोवे
0: और उसका विश्वास ना होवे।
1: जिसकी बात से आगे रखे।

0: दुर्गंध
1: सिमर दिन व्यर्था बिहाए
0: मेघ बिना जो खेती जाए
1: गोविंद पन में बैठे सब काम
0: जो कृपन के निरारथ दाम
1: तन तन ते जन जय कर सब सेओ हर नाओ
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहत और कछ और कमावत
0: मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत
1: जानन हार प्रभु वरवीन
0: बाहर पेक ना काहू पीन
1: अबर अब देशे आप ना करे
0: आवत जावत जन में मरे
1: जिसके अंतर बसे नंकार
0: इसकी सीख तरह संसार
1: जो तुम पाने तेन पर जाता
0: नानक उन जन चरण पर आता
1: करो बेनती भाव रव सब जाने
0: अपना किया आपे माने
1: आपे आप कर तनवेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप स्यान सगल ते रहत
0: सबका जाने आत्म की रहत।

0: परमेश्वरी।
1: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे।
0: तिस ठाकुर को रख मन माए।
1: जय प्रसाद सगंध तन लावे।
0: तिसको सिमरत परम गत पावे।
1: जय प्रसाद भजे सुख मंदर।
0: तिसे त्याए सदा मन अंदर।
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख वसना।
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग।
0: नानक सदा त्याए त्यावन जोग।
1: प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे।
0: तिसे त्या कर अवर लुभावे।
1: जय प्रसाद सुख से सुईजे।
0: आठ पहर
1: जय प्रसाद तुझ सब को माने।
0: मुक्ता को जस रसन बखाने।
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म।
0: सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
1: राव जी जब दरगह मन पावा।
0: नानक पास से थी कर जावे।
1: जय प्रसाद अरोग कंचन देही।
0: लिव लाओ तिस राम स्नेही।
1: जय प्रसाद तेरा उल्ला रहता।
0: मन सुख पावे हर हर जस कहते।
1: जय प्रसाद तेरे सगल सिंदर टाके।
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके।
1: जय प्रसाद तुझ को ना पहुंचे।
0: मन सा सिमरो प्रभु चे।
1: जय प्रसाद पाई दलाव दे।
0: नानक ताकी भगत करे।
1: जय प्रसाद अवगुण परिचे।
0: मन ते सिमरत क्यों आलस कीजे।
1: जय प्रसाद आसव हस्त असवारी।
0: मन ते प्रभु को कबू न बिसारी।
1: जय प्रसाद बालक मिलक तना।
0: राख करोई प्रभु अपने मना।
1: ने तेरी मन बंत बनाई।
0: उठत बैठ सती से त्याई।
1: तिसे त्याए जो एक लख।
0: यहां वहां नानक तेरी रखे।
1: जय प्रसाद करे पुण्य बहु दान।
0: आठ पहर कर तिसका ध्यान।
1: जय प्रसाद तू चार विहारी।
0: तिस प्रभ को साथ साथ चितारी।
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप।
0: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात।
0: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत रहे।
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
1: जय प्रसाद सुने कर नाल।
0: जय प्रसाद देखे विस्माद।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना।
0: जय प्रसाद सुख से जय बसना।
1: जय प्रसाद हस कर चला।
0: जय प्रसाद संपूर्ण फले।
1: जय प्रसाद परम गत पावे।
0: जय प्रसाद सुख से समावे।
1: ऐसा प्राप्त त्याग अवगत लागो।
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तू पार कर संसार।
0: जिस प्रभु को मूल न मनो विसार।
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप।
0: रे मन मूर तुता को जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे।
0: इसे जान मन सदा हजूरे।
1: जय प्रसाद तू पावे साच।
0: रे मन मेरे तुता स्यों राज।
1: जय प्रसाद सब की गत होए।
0: नानक जाप जपे जप सोए।
1: आज पाए जवे सो नाओ।
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ।
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास।
0: प्रभु दया ते कमल विकास।
1: प्रभु सोवर सन बसे मन सोए।
0: प्रभु दया ते मत उत्तम होए।
1: सन दान तेरी मिया।

0: राष्ट्रपति
1: साध के संग मखु जल हो तो
0: संग मल सगली खोत
1: साध के संग मिटे मानो
0: साध के संग प्रकटे सुज्ञान
1: साध के संग बुझे भव नेरा
0: सांग सब होत निबेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन
0: साध के संग एक ऊपर जतन
1: साध की महिमा वरने कौन परानी
0: नानक साध की शोभा प्रभाए समानी
1: साध के संग गोचर मिले
0: साध के संग सदा पर फुले
1: साध के संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पूंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध के संग मनोहर बैन
1: साध के संग ना कतू तावा
0: साध संग स्थित मन पावे
1: साध के संग माया ते पहन
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग मां पुनीत
1: साध संग कैसे नहीं वैर
0: साध के संग ना बीगा पैर
1: साध के संग ना ही को मंदा।

0: बने आई।
1: साध के संग न कबूत आवे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग वास्त्र गोचर लहे,
0: साधु के संग अजर सहे।
1: साध के संग मधे स्थान ऊंचे,
0: साधु के संग महल पहुँचे।
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के कुर्बान।
1: साध के संग सब कलो दार,
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे।
1: साधु के संग सो तन पावे,
0: जिस तन ते सब को बरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध के संग शोभा सुर देवा।
1: साधु के संग पाप लैन,
0: साध संग अमृत गुण गायन।
1: साध के संग सफल सर्व स्थान गम,
0: नानक साध के संग सफल जनम।
1: साध के संग नहीं कुछ काल,
0: दर्शन पेट तो होत निहाल।
1: साध के संग भूत हरे,
0: साध के संग नरक पर हरे।
1: साध के संग यहाँ हुआ सेला,
0: साध संग बिछरत हर मेला।
1: जो शेष होई फल पावे,
0: साध के संग ना बिरथा जावे।
1: पाप रहन साध रस बसे,
0: नानक उदरे साध सुन रसे।
1: साध के संग सुनो हर नाओ,
0: साध संग हर के गुण गाओ।
1: साध संग न मनते बिसरे,
0: साध संग सर पर निस्तर।
1: साध के संग लगे प्रभु डीठा,
0: साधु के संग काट काट डीठा।
1: साध संग पै आज्ञाकारी,
0: साध संगत पै हमारी।
1: साध के संग मिटे सब रोग,
0: नानक साध मिटे संजोग।
1: साध की महिमा वेद न जाने,
0: जेता सुने तेता बखियाने।
1: साध की उमा तै गुण ते दूर,
0: साध की उपा रही परपूर।
1: साध की शोभा का नाही अंत,
0: साध की शोभा सदा बेअंत।
1: साध की शोभा उचते उची,
0: साध की शोभा मुझ

0: जैसे सूर सर्प को सोकर
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस मानो
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी का तीज को
0: जो बसपा को खोदे को चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी का हेक नाओ
0: नानक जो पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रकाश
0: जैसे तारे ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी उच्चे उच्चा
0: मन अपने सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए
0: नानक जिन प्रभ आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सल खीरी ना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी छीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब रम्या
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना पाया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आसा
0: ब्रह्म ज्ञानी

0: को मंदा
1: प्रसाद बेख्या पर हरे
0: मन की वासना मन ते डरे
1: जित पांच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जैसे ऊपर सो प्रसन्न
0: विषन की माया ते हो पिन
1: कर्म करत होवे न कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू वाल फल की शनि वाशे
0: केवल भगत कीर्तन संग राचे
1: अंतनांतर सेवन कपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप जड़े अवरा नाम जपावे
0: नानको वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मानते बिनसे सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: सास संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहर करे नित नीत
0: मंतन अर्पे बिशन परीत
1: हर के चन हर देव सावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: ओ पांडा जो मन प्रबोधे
0: राम नाम आत्म में सोधे
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हर देव सावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल
0: सुख में जाने अस्थूल
1: तो वरना को देव देश
0: नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर तारे
0: पास प्रेत मुगत पाथर को तारे
1: सर्व रोग का उखल नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जोत किते ना पाइये धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम
1: जिसके मन पार राम का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: मातव राम तह नदरी आया
0: दास दशस्तर पाए तिन पाया
1: सदा नेट नेट हर जान
0: सो दास दर के परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: इस दास को सासो जी परे
1: सगल संग आत्म दास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: प्रभु की आज्ञा आत्म हतावे
0: जीवन मुख सो कहावे
1: तैसा हरक तैसा सोग
0: सदा अनंत नहीं बियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी अस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिक खाटी
1: तैसा मान तैसा मान
0: तैसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जोगत
0: नानक को पुर कहिए जीवन मुक्त
1: पावरों के सगले ठाओ
0: जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ
1: आपे कर्ण करावन जोग
0: पावे सोई फुन होग
1: बदले आव होए नंत्रंग
0: लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मध्य तैसा प्रगास
0: आ

0: केस होते,
1: कई कोट तपीसर होते,
0: कई कोट आत्मते अंतरा,
1: कई कोट तपका विचारे,
0: कई कोट नावतो नावते आवा,
1: नानक करते का अंत ना पावे,
0: कई कोट पायो मानी,
1: कई कोट अंध ज्ञानी,
0: कई कोट कर्पण कठोर,
1: कई कोट अभिक आत्म निकोर,
0: कई कोट आधार कोहिरे,
1: कई कोट पर दुख ना करे,
0: कई कोट माया शरम वाहे,
1: कई कोट परदेश ब्रह्माए,
0: जित लावो तित लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सत जति जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पांखी सर्व पाए,
1: कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
0: कई कोट पौन पानी वह संतर,
1: कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट सस्य सू नखत्र,
1: कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र,
0: सागर समग्री अपने सुतारे,
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे,
0: कई कोट राज तामस सातक,
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसासत,
0: कई कोट किए रतन समंद,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट किए चर जीव,
1: कई कोट गिरी मेर सुबरन कीवे,
0: कई कोट जाकन पसाच,
1: कई कोट भूत प्रे सुबर मृगाच,
0: आपते नेड़े सब ते दूर,
1: नानक आप अलिपत्रया पर पूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक सुरक निवासी,
0: कई कोट जन में जीव मरे,
1: कई कोट मोजो
0: कई कोट बैठ थी खाए,
1: कई कोट खाले थक पाए,
0: कई कोट किए तनवंत,
1: कई कोट माया में चिंत,
0: जय जय पाणा तै तै राखे,
1: नानक सब किस प्राप्त के हाथे,
0: कई कोट पाए वैरागी,
1: राम नाम संग तीन लिव लागी,
0: कई कोट पाप को खो जानते,
1: आत्म में पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन पाप प्यास हो,
1: इनको मिलियो प्रभ अविनाश,
0: कई कोट मांगे सा संग,
1: पार ब्रह्म तीन लागा रंग,
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
1: नानक तेजन सदा तन तन,
0: कई कोट खानी अर खांड,
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
0: कई कोट होए अवतार,
1: कई जगत कीनो विस्तार,
0: कई बार पसरे पसार,
1: सदा सदा एक एक

0: क्षेत्र राज अपमान
1: सोनक पाति हो स्वान
0: जो जाने मैं जो बनवंत
1: सो विष्टा का जंत
0: आपस को क्रमवंत कहावे
1: जन्म मरे वो जोन प्रमावे
0: धन भूमि का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
0: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
1: नानकिया मुकत आगे सुख पावे
0: धनवंता हुई कर गरबावे
1: प्रेम समान का संग न जावे
0: बोल स्कर मानु ऊपर करे आस
1: पाल पीतर ताका हुए विनाश
0: सबते आप जाने बलवंत
1: किन में होए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी।

0: अनेक तपस्या करे अहंकार
1: नरक सुरक फिर फिर अवतार
0: अनेक जतन कर आत्म नींद्र
1: दर्गे को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: जिसे भलाई निकट न आवे
0: सर्व की रेन जाका मन होए
1: तो नानक ताकि निर्मल सोए
0: जब लग जाने मस्ती कुछ होए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब ये जाने मैं किछ करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग ने चल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय दे सजाए
0: प्रभ कृपा ते बंधन टूटे
1: गुरु प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहस लख लख को उठतावे
1: त्रिपदा आवे माया पाछे पावे
0: अनुग भोग बिखिया की करे
1: त्रिपतावे खाप का मरे
0: बिना संतोख नहीं को राज
1: सुपन मनोरथ बिठे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़भागी किसे प्राप्त होए
0: कर्म करावण या पिया
1: सदा सदा नानक

0: संत के दुखन आर जा कटे,
1: संत के दुखन जानते नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते हीन,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान प्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जी करे,
1: नानक संसंग निंदक बीते,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग जुलवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को छले,
0: संत के दुखन ते सब जाए,
1: संत के दुखन नीच ने चाए,
0: संत दुखी का थाओ को नाहे,
1: नानक संत पावे ता ओए बिगत पाए,
0: संत का निंदक महा अतताई,
1: संत का निंदक किंटिक न पाए,
0: संत का निंदक महा त्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज तेहीन,
1: संत का निंदक दुखिया अरदीन,
0: संत के निंदक को सर्वरोग,
1: संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत के निंदा दुख में दोख,
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डांड लागे,
1: संत के दुखी को सब त्यागे,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा भिखारी,
0: संत का दुखी जन में मरे,
1: संत की दुख ना सुख ते टरे,
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
1: नानक संत पावे तारे मिलाए,
0: संत का दुखी अध बीच ते टूटे,
1: संत का दुखी किते काज ना पहुँचे,
0: संत के दुखी को उद्यान परमाइये,
1: संत का दुखी उजड़ पाइये,
0: संत का दुखी अंतर तीत होता,
1: जो सास बिना मृतक की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किचना है,
1: आपन बीज आपे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर न रखड़े हार,
1: नानक संत पावे ताले उबार,
0: संत का दुखी यो बिरलाए,
1: यो जल बिहून मछली तड़फाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: यो बुआर तिल खेत माए दुहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
0: निरत निरत कीर्त निंदक का तुर ही पया,
1: नानक जो तिस पावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाई है,
1: संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है,
0: संत के दुखी की पूजा नया सा,
1: संत का दुखी उठ चले निराशा,
0: संत का दुख न कृष्ट है कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया कीर्तन में टैकोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कट तिसके यो करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: प्रति उस्तत करो दिन रात,
1: तिसे त्यावो सास गिरास,
0: सब किछ वर्त तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेल आप करने हार,
1: दूसर कौन कहे विचार,
0: जिसनो कृपा करे
1: तिसे आपन नाम ले,
2: बड़ा

0: लागन की चिंता जिस मन माहे
1: इसते बिरथा कोए नाए
0: प्रेमन मेरे सदा हर जाप
1: अब नासी प्रभु आपे आप
0: आपन किया कछु ना होए
1: जैसे प्राणी लोचे कोए
0: किसवे नाही तेरा किछ काम
1: गत नानक जपे हर नाम
0: रूप अंत होए नाही मोह
1: रख की जो सगल कट सो।

0: ते पर नहीं किछ कोए
1: सर्व निरंतर को सोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: गहर गंभीर गहीर सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
1: कृपा निदान दयाल बख्शंद
0: साथ रे की चरनी पाओ
1: नानक के मन अनराओ
0: मनसा पूर्ण सरना जोग
1: जो कर पाया सोई होग
0: भरन भरन जाका नेत्र फोर
1: इसका मंत्र न जाने होर
0: रूप मंगल सद जाके
1: सर्व थोक सुनिए करता के
0: राज में राज जोग में जोगी
1: तप में तपेसर ग्रस्त में भोगी
0: त्याए त्याए भगत सुख पाया
1: नानक इस पुरख का किने अंत न पाया
0: जाके लीला की मितना है
1: सगल देव हारे अवगाए
0: पिता का जन्म के जाने पूत
1: सगल परोई अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे
1: जन दास नाम ते आवे से
0: ते गुण में ते गुण में जाको परमाए
1: जन्म मरे फिर आवे जाए
0: ऊंच नीच तिसके स्थान
1: जैसा जनावे तैसा नानक जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग
1: नाना भेद करे एक रंग
0: नाना विद की नो विस्तार
1: प्रभ अविनाशी एक ओंकार
0: नाना चलत करे खिन माहे
1: पूरे ओ पूरन सब ठाए
0: नाना विद कर वर्त बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाई
0: सब घट तिसके तिसके ठाओ
1: जब जब जीवे नानक हर नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खन ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आगास पाता
1: नाम के तारे सगले आकार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन
1: नाम के संग उदरे सुन श्रवण
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रदान
0: करतूत सत सत जाकी बाणी
1: सत पुरख सब माए समाने
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब पली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुरु ते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत नृत्य बुझे जे कोए
1: नाम जपता की गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्टि सुकर न हार
1: अवर न बूझ करत विचार
0: करते कि मित न जाने किया
1: नानक जो तिस पावे सो वरतिया
0: विस्मन विषम भय विस्माद
1: जिन बुझा तिस आया स्वाद
0: रंग राच जन रहे
1: गुर के बचन पदार्थ लहे
0: ओए दाते दुख कटन हार
1: जाके संग तरे संसार
0: जन का सेवक सो वड भागी
1: जन के संग

0: सतगुर जन जानिया सतगुर तिसके संग से कबूतर नानक हर गुण गाष्टपति
1: सतगुर सिख की करह प्रतिपाल
0: सेवक गुर सदा दयाल
1: सिख के गुर दुर्मत मल हिरा
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काट
0: गुर का सिख विकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड पागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारे
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे
1: गुर के ग्रह जेवक जोर है
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आपस को कर कछ न जन

0: प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिसे आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: बीस बिस्वे गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम।

0: कमल राखो मन माहे
1: जन्म जन्म के किल बिक जाए
0: आप जपो अवरा नाम जपावो
1: सुरत कहत रहत गत पावो
0: सार पूत सत हर को नाम
1: सह सुवाए नानक गुन
0: गावो तेरी उत्तर समैल
1: बिन जाए हो मैं बिक फैल
0: वह अचिंत बसे सुखना
1: सास ग्रह सर नाम समाल
0: चाड़ सियाड़ पसगली मना
1: सास संग पावे सतना
0: हर पूंजी संच करो व्यवहार
1: सुख।

0: गुण गावो
1: सास प्रभु में त्यावो
0: चरण कमल स्यों लागे प्रीत
1: भगत करो प्रभु की नित नीत
0: ओठ एको आधार
1: नानक मांगे नाम प्रसार
0: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए
1: हर रस पावे बिरला कोए
0: जिन चाख्या से जन तृप्ता ने
1: पूरन पूरक नहीं डोलाने
0: सुपर परे प्रेम रस रंग
1: उपजे चाहु साध के संग
0: परे शरण आन सब त्याग
1: अंतर प्रभास अंदिन लिवलाग
0: भागी जपया प्रभ सोए
1: नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पही
1: सदगुर ते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभ होयो दया
1: सेवक की नो सदा निहाल
0: बंधन काट मुकत जन पया
1: जन्म मरण दुख क्रम गया
0: बिछ पुनी सरदा सब पूरी
1: प्रभ रया सद संग हजूरी
0: जिसका सात इंद्रिया मिलाए
1: नानक प्रगति नाम समाए
0: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने
1: सो क्यों बिसरे जे किया जाने
0: सो क्यों बिसरे जिन सब गिछ दिया
1: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
0: सो क्यों बिसरे जे अगन में रखे
1: गुर प्रसाद को बिरला लखे
0: सो क्यों बिसरे जे बिखते काटे
1: जन्म जन्म का टूटा गाढ़े
0: गुर पूरे तत एह बुझाया
1: प्रभ अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो एक काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अवरे नाम जपावो
0: भगत पाए तरी संसार
1: बिन भगति तन

0: पाद पुरख कारण करतार
1: भगजना के प्राण आधार
0: जो जो जपे सो होए पुनीत
1: भगत पाए लावे मन हित
0: हम निर्गुण यार नीच अजान
1: नानक तुमरे शरण पुरख भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमख हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बड़े आए
1: हर के नाम की कथा मन पाए
0: बहु भोजन का पर संगीत
1: रसना जपती हर हर नीत
0: ईश करनी सो बात
1: अनुमंत बसे पूरन गुरुमंत
0: साध संग प्रभ देव निवास।

0: अकार एकछ न दृष्टे ता
1: आप उन तब कहते होता
0: जब तारे आपन सुन समात
1: तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वरण चिन्ह न जापत
1: तब हरक शोक को किसे व्यापत
0: जब आपन आप पार ब्रह्म
1: तब मोह कहां किस होवत परम
0: आपन खेल आप वर्ती जा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभु के वर्तने
1: तब बंद मुकत को किसको गने
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नरक सुर को कौन उधार
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए
1: तब से सगत को किठाए
0: जब आप अपनी ज्योत धरै
1: तब कवन निडर कवन तडर
0: आपन चलत आप कर लय हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुख आपन आसन
1: जन्म मरण को का विनाशन
0: जब पूर्ण कर्ता प्रभ सोए
1: तब जमकी त्राज कहो किस होए
0: जब अभिक्त अगोचर प्रभ एका
1: तब चितर गुपत के पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे
1: तब काम छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप ही अचरजा
1: नानक आपन रूप आप ही उपरजा
0: जय निर्मल पुरख पत होता
1: जय बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तय कौन को मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: जय छल शीतल भगत को कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी स्रोत संग समावे
1: तय किसे पू कवन तृप्तावे
0: करन करावन कर नहार
1: नानक करते का नहीं समार
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: तब कवन माई बाप मित्र सत पाई
0: जय सर्व कला आपे पर भीन
1: तब वेद प्रतीप कहां को चीन
0: जब आपन आप उड़ता रहे
1: तो सगन अब सगन कहां बिचारे
0: जय आपन ऊज आपन आप नेरा
1: कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: विश्वन विषम रहे विषमाद
1: नानक अपनी का जानो आप
0: जय अचेल अछेद अभेद समाया
1: उमा किसे व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश
1: तह गुण का नाही परवेश
0: जय एक एक एक भगवंता
1: तह कौन न चिन किस लागे चिंता
0: जय आपन आप पतियारा
1: तह कौन कथे कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊचते ऊचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: जय आप रचियो पर पंच आकार
1: तह गुण में कीनो विस्तार
0: पाप उन तय पई कहावत
1: को नरक को सुरक बचा।

0: sea,
1: क्या कह
0: अष्टपदी
2: आप कथा है आप सुन रहे हार
0: आपे का विसार
2: जिस भावे तिष्ट हो पाए
0: अपने पाने लय समाए
2: तुम ते पेन नहीं किच होए।

0: शेष तज अवर कहाँ को जाए।
1: एक निरंजन राय
0: जी की जुगत जाके सब हाथ
1: अंतर बाहर जानो साथ।
0: पुनर्धान बेअंत अपार
1: नानक दास सदा बलिहार।
0: पूर्ण पूर्ण है दयाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल।
0: अपने कर्तव्य जान आप
1: अंतर जामी रहो व्याप।
0: पाल जी अनुभव पात
1: जो जो रचस तिसे त्यात।
0: जिस पावे तिस लय मिलाए
1: भगत करे हर के गुण गाए।
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या
1: करन हार नानक एक जान्या।
0: जन लागा हर एक कहनाए
1: इसकी आस ना बैठे जाए।
0: सेवक को सेवा बने आई
1: हुकम बूझ परम पद पाए।
0: इसते ऊपर नहीं विचार
1: जाके मन बसया निरंकार।
0: बंधन तोर पे निर्वय
1: अंधिन पूजा गुरु के पैर।
0: लोक सुखी है पर लोक सोहेले
1: नानक हर सब आपे मिले।
0: मिल करो आनंद
1: गुण गावो परमानंद।
0: राम नाम तत् करो विचार
1: दुर्लभ देखा करो उधार।
0: अमृत बचन हर के गुण गाओ
1: प्राण तरन काए सुहाओ।
0: आठ पैर प्रभ एको नेरा
1: मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा।
0: सुन उपदेश हृदय बसाओ
1: मन छे नानक फल पाओ।
0: पलत पलत दोय लेओ सवार
1: राम नाम अंतर उद्धार।
0: गुरु की पूरी दीख्या
1: जिस मन बसे ते साच परी क्या।
0: मंत्र नाम जपो लिबलाए
1: दर्द मन ते पहुँचाए।
0: सच व्यापार करो।

0: सगल पौ मिटा
1: रब कृपा ते प्राणी छुटे
0: जिस पर राखे तिस नाही दुख
1: नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटे अहंकार
1: तिस जन को कोई न पहुंचन हार
0: ऊपर ठाडा गुरसूरा
1: नानक ताके कारज पूरा
0: मत पूरे अमृत जाके दृष्ट
1: दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: तन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रदान।

0: संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल सामग्री एक कट माहे
1: अनेक रंग नाना दृष्टाए
0: मौनिध अमृत प्रभ का नाम
1: देही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाद अनत नाद
1: कह न जाय अचरज विस्माद
0: देखिया जिस आप दिखाए
1: नानक ते जन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: कट कट व्याप रे भगवंत
0: माहे आकाश पयाल
1: सर्व लोक पूरन प्रतिपाल
0: अंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: ओम पानी बसंतन माहे
1: चार गुण दैत्य से समाए
0: इस्ते पिन नहीं कोठाओ
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमृत में देख
1: सस्य सूर्य नक्षत्र में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोला
1: पढ़ो।